चक्कर वाला बल तुरी बंग होले फिर गले बैन शो तर चक्कर वाला बल तुरबु होने रखना इन तुरबु होने उम्स चासक देतल बल उरा जीलो और इन हफ्ते से न मुसल गया हो चुंबक दार और हफ्ते से मुसल बा फिर तुरबु होने तो फिर गुने दौर बल बल शुभा कान मालगी उम्स कर Hartivari Balam, Windikanum Sol, Keritin Jorakte, Numriki Dinum Rulat, Urguno Yuh, Palam Busti Busnol, Unnolang Kwaki, Ulmi Hulidin Doktorot, Unshifte Herbashidi, Tondai Horm Busnol Buhi. In Durban, Wanamalabal, Durban Jukter, Virgil Himbel, Durban Jehusa,

शिवालवा लिटुगा आता बोशिर इमो बालकंदल लोंगहांग येसा नेसलगिंजीरा काल्थो अंशिगी उरुम्बखीबालगा चाखंदस्ते शास पुसीबालबल एरम्नेरम्बुलित्कत यह अंशिन हुख पोगीबासकाच सूलंदं बालबाल Baga baga angshuti, erbun oicho halugla shui. Kal tatu yago mag erbun erbun davna. Angshne tatr balol, kal tatkini erbun thago dorasun balol. Huwa busar buthago thaste shasar balol buthag shulena. कन्यंगी दौतला, शिवाल बाल, साईजुंगी बाल बाल, उम्मन, कार्षके चिरकी हुरना संबल कार्ष चुप्पा, उतर उतर चिरनी तार्ष तोलगा, शिरकिंग हुरेगा बाल शिलम कार्ष, हरबा चिर कारबा कतल, सांसकुन शिरक तस्ला बाल, मानो हरगी बाल बाल चेत्रोलना, कन्यंग बाल बाल, साईजुंग साईगा हैरे थोसा चुप्पा से बुरमुखे बलगा चिरचिपसी तक्षी डेलगा ठोकेरे थमजिगी यालगच तारे ये थोरे कन्द बुलते हमाबा फेशियो हुर्चो और फिशी थोलहोत हरंग हंगरगिन तोगी संस्ना हालगु इंदु यब्तिक बालबोल होलगेत पलबल तिली थी नसरवल नेखता शाजी अलंतरे चरलात निगंधा चरल मक्षा खुदी खरी बोलते शक मुशी चुरती वाला बहुत शाज है दर शब्स किंदुर मर शब्स अंदर बोलते ही गात सुनिए वाले बल खुले चीदे खेलेंगर की शुमगी आवाज आता थे उसे तो खुले ती यंदन चा एलविसोट चूँ उम्र सेल्फ कर लगूँ अता आंश उठ के यंग सार हुलेज बिना फिर तुम यक्ते खुम्बिंग बाला बाल थक्षी तरंग करता उधर उधर कोर बता कर्च फैलकी एरिचू जेल बरना इलोहर किल्चा उल्टो ताम बाल बाल सेल्फ हाल्चा